ये NHK World जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 26 मई मंगलवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए का कहना है कि ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से निपटने के लिए सरकार वित्त वर्ष 2026 का पूरक बजट पेश करने की योजना बना रही है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि वे अगले सप्ताह तक संसद में 3 खरब येन यानी 18.8 अरब डॉलर से अधिक का बजट मसौदा प्रस्तुत करेंगी। सोमवार को ताकाइची ने पत्रकारों को बताया कि पश्चिम एशियाई हालातों के प्रभावों से सरकार कैसे निपटेगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया की स्थिति से निपटने के लिए सरकार एक आरक्षित निधि बनाएगी ताकि पेट्रोल की खुदरा कीमतों पर लगाम लगाने जैसे उपाय जारी रखे जा सकें। ताकाइची ने कहा कि सरकार अगले वसंत तक के लिए पर्याप्त तेल सुनिश्चित करने में सक्षम होनी चाहिए, क्योंकि होर्मूज जलडमरू मध्य के अलावा अन्य मार्गों से बड़ी मात्रा में तेल आयात किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने तेल की इतनी मात्रा का अनुमान लगाया था जो इस वर्षांत के बाद तक भी पर्याप्त होगी। ताकाइची ने यह भी कहा कि सरकार इस साल गर्मियों में ऊर्जा बचत के लिए सामान्य से सख्त अपील नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं आया है कि सरकार लोगों से ऊर्जा बचाने का इतना आग्रह करे कि आर्थिक गतिविधियां ही ठप पड़ जाएं। जापान इस वर्ष गर्मियों में लोगों का ऊर्जा खर्च कम करने के लिए अरबों डॉलर आवंटित करने जा रहा है। ईरान संघर्ष के चलते ईंधन महंगा होने के कारण ये उपाय अपनाया जा रहा है। सरकार ने मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में इस कदम को मंजूरी दी। इसके तहत जुलाई से सितंबर तक बिजली व गैस के बिल कम करने के लिए सरकार लगभग 510 अरब येन यानी 3.2 अरब डॉलर खर्च करेगी। ये धनराशि मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में से अलग रखे गए 10 खरब येन के आपात कोष से आएगी। अधिकारियों का कहना है कि इस वित्तीय सहायता से 3 महीनों में एक औसत परिवार के गैस व बिजली के बिलों में लगभग 5,000 येन यानी करीब 31 डॉलर की कमी आएगी। वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी का कहना है कि सरकार पश्चिम एशिया से होने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। भारत और जापान के विदेश मंत्रियों ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित नौवहन तथा स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग पर सहमति व्यक्त की है। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु मंगलवार को भारत, जापान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया की क्वाड व्यवस्था के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए भारत यात्रा पर हैं। क्वाड बैठक से पहले सोमवार को मोतेगी ने भारतीय विदेश मंत्री सुब्रह्मण्यम जयशंकर से मुलाकात की। जयशंकर ने भारत जापान संबंधों को और मजबूती देने की आशा व्यक्त की। मोतेगी ने घनिष्ठ द्विपक्षीय समन्वय की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि दोनों देशों को स्वतंत्र एवं मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाने के प्रयासों में प्रेरक शक्ति के रूप में काम करना चाहिए। जयशंकर और मोतेगी अहम सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला को और लचीला बनाने सहित आर्थिक सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए। उन्होंने पुष्टि की कि भारत और जापान रक्षा, सुरक्षा और जन आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के ठोस कदम उठाएंगे। दोनों ने पश्चिम एशिया के हालातों पर भी विचार विमर्श किया और होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित नौवहन तथा ऊर्जा व अहम सामग्रियों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करने सहित विभिन्न मुद्दों पर सहयोग की पुष्टि की।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: जापान के शिक्षा मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने सरकारी स्कूलों से आग्रह किया है कि वे विदेशी छात्रों की तेजी से बढ़ती संख्या से निपटने के लिए बाहर से जापानी भाषा के प्रशिक्षकों को नियुक्त करें। इस समिति ने विदेशी छात्रों के लिए शैक्षिक वातावरण में सुधार के उद्देश्य से एक रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है। मंत्रालय का कहना है कि पिछले शैक्षणिक वर्ष में मार्च तक सरकारी स्कूलों में रिकॉर्ड 84,759 छात्रों को जापानी भाषा की कक्षाओं की आवश्यकता पड़ी। 2016 के शैक्षणिक वर्ष के बाद 9 साल में ये संख्या दुगनी हो गई है। आमतौर पर लाइसेंस प्राप्त शिक्षक ही जापानी भाषा पढ़ाते हैं, लेकिन मसौदे में प्रस्ताव दिया गया है कि शिक्षा अधिकारी एक ऐसी व्यवस्था अपनाएं जिसके तहत कुछ शर्तें पूरी करने पर लाइसेंस के बिना भी बाहरी अध्यापक अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कक्षाओं में पढ़ा सकें। मसौदे में सरकार से ये भी आग्रह किया गया है कि वो वित्तीय सहायता प्रदान करे ताकि जापान भर की स्थानीय नगरपालिकाएं देश में नए आए बच्चों के लिए पूर्व कक्षाएं आयोजित कर सकें। इन कक्षाओं में बच्चे स्कूली तौर तरीके और जापानी भाषा के बुनियादी वाक्य सीख सकते हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रम चलाने वाली नगरपालिकाओं की संख्या अब भी सीमित है। समिति के सदस्यों ने विश्वविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विदेशी बच्चों को पढ़ाने से संबंधित कक्षाएं शामिल करने और जापानी भाषा शिक्षण के लिए दिशा निर्देश बनाने की भी मांग की। जापान में डिपार्टमेंट स्टोर की बिक्री अप्रैल में लगातार चौथे महीने बढ़ी। वसंत के कपड़ों तथा आभूषण व घड़ियों जैसी महंगी वस्तुओं की मांग में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई। जापान डिपार्टमेंट स्टोर्स एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा स्टोरों में बिक्री 440 अरब येन से कुछ अधिक यानी 2.8 अरब डॉलर रही। पिछले साल इसी महीने की तुलना में ये 5% से अधिक की वृद्धि है। विदेशी पर्यटकों को टैक्स फ्री वस्तुओं की बिक्री में लगातार दूसरे महीने वृद्धि दर्ज की गई। इस श्रेणी में आमदनी 18% बढ़कर 52 अरब येन यानी 33 करोड़ डॉलर हो गई। एक तरफ चीन से आने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई, लेकिन वहीं ताइवान, दक्षिण कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के यात्रियों द्वारा अधिक खर्च से इसकी भरपाई हो गई।
0: इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/हिंदी पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।